0: बाद होश हूँ मैं और होश नहीं अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: कुछ तू ही बता दे जोर जबी अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी अब क्या होगा
1: क्या होगा
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं अब क्या होगा
1: क्या